0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: रश्मि प्रभा आप टमाटा त्रिपाजार का पकड़ बड़कमी ग्राम अंजुटो अंजुटी नाला उदवी सबका
2: காப்பீடு செய்யுங்க பாதுகாப்பு கவசம் கட்டி